गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज सुबह ना तो अलार्म भी थोड़ा प्यारा लगने लगा है। ऑफिस का रास्ता बिना तो छोटा लगता है और बॉस की डांट भी प्यारी लगने लगती है आज, क्योंकि दोस्तों आज है शुक्र, है शुक्रवार है और आपने ट्यून किया है MGM 90.8 FM। और पूरे हफ्ते ना तो मंडे के झटके, ट्यूजडे की टेंशन, वेंसडे की मीटिंग और थर्सडे की वेटिंग में निकल जाता है। और आज आया है वो दिन जिसका इंतजार हर एक एम्प्लॉय को, हर स्टूडेंट को होता है, वो है शुक्रवार का दिन, फ्राइडे का दिन। आज लोग काम कम और वीकेंड के प्लान ज्यादा सोचते हैं, कोई मूवी का प्लान बनाता है, कोई दोस्त को मैसेज करने का, और कुछ लोग ऐसे भी होते जो बस सोच रहे होते कि यार आज फ्राइडे, आज बस काम करूंगा और दो दिन बस आराम करूंगा। तो अगर आप भी ना तो इस वक्त नींद से उठे होगे और अपने ऑफिस को जाने तैयार हो गए होगे, या कॉलेज या अपने डेली रूटीन की तरफ निकल चुके होगे, तो मुस्कुराइएगा जरूर, क्योंकि आज है फ्राइडे और कल से वीकेंड। तो बाकी तो आपकी मुस्कान की चमकान और खुशनुमा करने के लिए मैं तो आपके साथ यहाँ हूँ ही, और भी बहुत सारी बातें होगी आज के अपने शो में, मुलाकातें होगी और हसीन नगमों का साथ भी होगा। तब तक के लिए आने वाले गुड मॉर्निंग करने वाले गाने एंजॉय कीजिएगा, जिससे आपका मूड फ्रेश, एकदम ताजा हो जाएगा। एंड सुनते रहिएगा

किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। बेटा अपने कमरे में बैठा ऑनलाइन क्लास कर रहा था। नई किताबें, नया बैग और कुछ दिन पहले ही खरीदा गया नया मोबाइल, सब कुछ था उसके पास। उसे लगता था कि ये तो हर किसी के पापा करते होंगे। एक दिन अचानक उसे पापा की पुरानी अलमारी में कुछ कागज मिले। उनमें एक पुरानी बाइक बेचने की रसीद थी। वो वही बाइक थी जिसे पापा को सबसे ज्यादा लगाव था। बेटे ने माँ से पूछा, मम्मी पापा ने अपनी इतनी प्यारी बाइक क्यों बेच दी थी? माँ कुछ देर चुप रही और फिर बोली, जिस दिन तुम्हारे कॉलेज की फीस भरनी थी उस दिन घर में पूरे पैसे नहीं थे। तुम्हारे पापा ने किसी से उधार नहीं लिया, उन्होंने अपनी सबसे प्यारी चीज बेच दी ताकि तुम्हारी पढ़ाई कभी ना रुके। बेटा सन रह गया। उसे याद आया उसी दिन पापा ने हंसते हुए कहा था, पुरानी हो गई थी बाइक इसलिए बेच दी। लेकिन सच तो कुछ और ही था। उसे ये भी याद आया कि पिछले कई सालों से पापा ने अपने लिए नया मोबाइल नहीं खरीदा, ना नए कपड़े खरीदे। हर बार जब बात उनकी किसी शौक की आती तो कहते, अरे अभी इसकी क्या ही जरूरत है। बेटे को तब समझ आया कि पापा जरूरत नहीं टाल रहे थे, वो अपने सपने टाल रहे थे ताकि उसके सपने पूरे हो सके। उस रात बेटे ने पहली बार पापा को सिर्फ पापा नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह देखा जो हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को

0: पाव, समोसा, मोमोज, आय हाय क्या बात है, और भजिया, इसको तो कैसे भूल सकते हैं हम। नाम सुन देना तो मुंह में पानी आ ही जाता है, और नाश्ते में हम इनमें से तो कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ आरजे अदनान, और अगर वो स्ट्रीट फूड हो तो भाई अट्रैक्शन डबल हो ही जाता है। लेकिन एक सवाल है, क्या स्ट्रीट फूड खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग भी होती है या वीक होती है? चलिए जानते हैं अपने हेल्थ सेगमेंट में। देखिए, स्ट्रीट फूड खुद विलन नहीं है, प्रॉब्लम तब होती जब हाइजीन की बात आती है। खुले में रखा हुआ खाना, गंदा पानी या बार बार यूज किया गया तेल, ये सब ना तो बैक्टीरिया और जर्म्स को इनवाइट कर सकते हैं, और फिर शुरू होती है पेट की कहानी। कभी एसिडिटी, कभी स्टमक इन्फेक्शन, कभी फूड पॉइजनिंग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आज से स्ट्रीट फूड से ब्रेकअप कर लो, बस थोड़ी स्मार्टनेस जरूरी है। जहाँ सफाई दिखे वहाँ से खाओ, गर्म और फ्रेश बना हुआ फूड चूज करो, और खाने के पहले और बाद में हाथ साफ रखना बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है तो सिर्फ सप्लीमेंट्स नहीं, अच्छी नींद, रेगुलर एक्सरसाइज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रॉपर हाइड्रेशन भी उतना ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इम्यूनिटी कोई एक दिन में नहीं बनती, ये रोज की छोटी छोटी हेल्दी हैबिट से बनती है। तो अगली बार जब दोस्त बोले चल भाई स्ट्रीट फूड खाने चलते हैं, तो जरूर जाओ, बस टेस्ट के साथ हाइजीन का भी ख्याल रखो, क्योंकि मजा तभी है जब वो खाना सजा ना बने, समझे? यही बात याद रखिए, हेल्दी रहिए और सुनते रहिए।
1: आज मी माझ्या मनाला ठामपणे सांगून टाकलं प्रियंका, माणसाला जन्मतच दोन हात नसतात, त्याला असतात ते फक्त दोन पाय।

0: लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल्थ जिंदगी। You are listening MGM 90.8 FM और अपने साथ है डॉक्टर मानसिक रजगावकर मैम फ्रॉम MGM साइकोलॉजी डिपार्टमेंट HOD। तो मैम, मेरा आज का आपसे सवाल ये है कि ऑफिस में टॉक्सिक एनवायरनमेंट या बॉस का प्रेशर भी स्ट्रेस का बड़ा रीजन होता है क्या? ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉइज को क्या अप्रोच रखनी चाहिए?
1: क्योंकि अगेन लाइक आई सेड कि अगर एक हाथ दो लोग टॉक्सिक है तो वो आपके अच्छे बिहेवियर को भी नेगेटिव प्रेजेंट करें। तो आपका ह्यूमन बॉन्ड एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर कोई टॉक्सिक लोग हैं डिपार्टमेंट में या कंपनी में, तो हमारा फ्रेंड सर्कल भी उतना ही अच्छा और स्ट्रांग होना चाहिए जो लोग हमें समझ सके। और अगर टॉक्सिसिटी से हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो, फिर हमको ये रिपोर्ट तो करना ही चाहिए, है ना, हायर अथॉरिटीज को। साइमल्टेनियसली हमको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से भी हेल्प लेनी चाहिए अगर वो टॉक्सिसिटी ज्यादा हमको अफेक्ट कर रही हो नेगेटिवली। तो ये कुछ चीजें हैं। और अगर टॉक्सिसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ ही जाए तो एक एम्प्लॉय ने एग्जिट प्लान हमेशा रखना चाहिए। यू नो, दे शुड हैव ऑलवेज प्लान बी कि अगर यहाँ से हम एग्जिट हो गए तो व्हाट इज दैट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जहाँ हम जा सकते हैं। बिकॉज व्हाट हैपेंस व्हेनेवर वी हैव द बैकअप प्लान, एग्जिस्टिंग वर्क एनवायरनमेंट का इतना भी स्ट्रेस नहीं आता जब हमें पता होता है कि अगर हम यहाँ से निकले तो कहीं और बेहतर जगह हम जाने वाले हैं। तो इसीलिए एग्जिट प्लान मेंटल लेवल पे भी हमें हेल्प ही करता है और वो हमें ज़्यादा अफेक्ट नहीं होने देता है। और जनरली लाइफ में अच्छा है, एग्जिट प्लान होना इज़ अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव थिंग।
0: तो भाई, ऑफिस कल्चर तो मैटर करता है अपने मेंटल हेल्थ के लिए। तो बॉस लोग, आप भी जरा सुधर जाइए। आपकी जिम्मेदारी अपने ऑफिस का कल्चर मेंटेन रखने की, हेल्दी कल्चर रखोगे तो एम्प्लॉइज भी अच्छे से काम करेंगे। लेकिन ये चीजें बॉस लोगों को समझ में नहीं आती है, क्या ही बोले। अगर मेंटेन रखने की, हेल्दी कल्चर रखोगे तो एम्प्लॉइज भी अच्छे से काम करेंगे। लेकिन ये चीजें बॉस लोगों को समझ में नहीं आती है, क्या ही बोले।

फरमाइश पूरी करना ये तो मेरा काम है। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM और इस वक्त ना तो हम आपकी फरमाइश पूरी करते हैं। त्रास गाने जो फरमाइश लिया है सुदेश माळवे यांच्याकडून या गाने

क्या बात है यार, फिल्म का नाम भी तोहफा है जो कि 1984 में आई थी और इस गाने में आवाज है किशोर कुमार और आशा भोसले जी की और इस गाने को म्यूजिक दिया था बप्पी लहरी जी ने और बेहतरीन सा गाना है और आज भी जब भी तोहफे की बात आती है तो माइंड में सबसे पहले यही गाना प्ले होता है। खैर आज आपको कोई तोहफा देने वाला है तो बहुत ही बढ़िया बात, नहीं भी दिया तो इस गाने के जरिए मैंने आपको एक तोहफा दिया है, आप महसूस कीजिएगा एंड सुदेश सर की फरमाइश पर ये गाना भी हम प्ले करेंगे। बाय द वे दोस्तों आज की भी कुछ फरमाइश हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर एंड स्टेट।

दोस्तों हम अक्सर बोलते हैं कि पढ़ाई हर बच्चे का हक है, लेकिन अपने शहर के पास एक ऐसी बस्ती है जहां बच्चे आज भी क्लासरूम में नहीं बल्कि पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। हेलो, मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमटीएम 90.8 एफएम। और अपने शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर पंडरपुर रोड पर बोहरा नगर के नजदीक ये एक बस्ती है। यहाँ के बच्चे ना तो उन परिवारों से आते हैं जो रोज कचरा और कबाड़ बेचकर अपना घर चलाते हैं। 6 साल पहले एक टीचर ने सोचा कि अगर बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच सकते तो स्कूल ही बच्चों तक पहुंचा जाए, और तब से पेड़ के नीचे क्लास लग रही है। और ये टीचर का नाम है भगवान सदावर्ते। इन्होंने ये आइडिया सोची थी। और सबसे दुखद बात क्या हुई पता है? यहाँ पर सर्वे हुआ, अधिकारी आए, फाइल बनी, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग आज तक नहीं बनी। और यहाँ तक कि इन बस्ती के बहुत सारे बच्चों के पास आधार कार्ड तक नहीं है। अब इसके लिए भी उन्होंने ट्राई किया, फाइल्स पे फाइल्स, फॉर्म फिलअप किए, लेकिन सरकारी काम है वो फाइल वैसे ही धूल खाती हुई अब तक ऑफिस में पड़ी है। सोचिए, जहाँ कुछ बच्चे एसी क्लासरूम में पढ़ते हैं, वहीं कुछ बच्चे खुले आसमान के नीचे अपने सपने लिख रहे हैं। एजुकेशन हर एक बच्चे का अधिकार है, और दूसरी तरफ इन बस्ती तक एजुकेशन पहुंच ही नहीं रहा। लेकिन भगवान सदावर्ती जैसे टीचर की वजह से ना इन बच्चों की जिंदगी में भी नई उम्मीद की किरण जाग रही है। उम्मीद है कि सिर्फ सर्वे नहीं बल्कि जल्द कोई फैसला भी होगा, क्योंकि हर बच्चे को सिर्फ किताब नहीं एक बेहतर क्लासरूम भी मिलना चाहिए। बिना छत वाले स्कूल के ऊपर छत भी आनी चाहिए। और इस बात से एक सीख मिलती है कि कभी कभी स्कूल बिल्डिंग से नहीं किसी टीचर के जज्बे से चलती है। तो एक ग्रैंड सॉलिड तो बनता ही है। स्टे ट्यून।

0: व्यसन मुक्ति पुरुष और महिला अंतरुग्न सुविधा उपलब्ध आज भेट दिया।
1: उत्कर्ष क्लिनिक हरसुल टी पॉइंट एचपी पेट्रोल पंप शेजारी जळगाव रोड छत्रपति संभाजीनगर अंतरुग्ण विभाग दिशा हॉस्पिटल समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ छत्रपति संभाजीनगर कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688।
0: क्या आप इंग्लिश फ्रेंच जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं या फिर अरेबिक संस्कृत मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं
1: तो एमसीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश एमए इंग्लिश एमए मराठी एमए हिंदी एमए उर्दू एमए संस्कृत पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक डिप्लोमा प्रोग्राम्स क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश संस्कृत फ्रेंच जर्मन उर्दू जापानीज पर्शियन एंड ट्रांसलेशन
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515। अगं प्रिया ऐकलं का 16 मे पासून जनगणनेचा दुसरा टप्पा सुरू झालाय।
2: हो आणि मी तर स्वगणना केलीये। प्रगणक आले की त्यांना फक्त माझा ACID नंबर देणार।
0: आणि ज्यांनी स्वगणना केलेली नाही
2: त्यांना प्रगणकांच्या मोबाईल ऍप मधील प्रश्नांची उत्तरे देऊन माहिती द्यायची आहे। प्रगणकांना सहकार्य करूया आणि जबाबदार नागरिक बनूया।
0: जनगणना प्रगणकांना सहकार्य करा आणि आपली जबाबदारी पार पाडा। छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेद्वारा जनहितार्थ प्रसारित।

चन्ना मेरे या गाना भी आप एंजॉय कर रहे थे। गाना सुनने के बाद ना किसी को अपने चन्ना की तो याद आ ही जाती है। वक्त हो चुका है मेरा आपसे अभी अलविदा लेने का, टाटा बाय बाय करने का। मैं तो चला अब अपनी गली। और आज भाई क्या है पता है ना, शुक्र है, शुक्रवार है, और शुक्रवार एकदम अच्छे तरीके से गुजारिएगा, क्योंकि आज का ये दिन होता है जो टेंशन नहीं, स्ट्रेस में बस रिलीफ लेकर आता है। भले कितना ही काम क्यों ना हो आज, लेकिन सामने होती है वीकेंड की खुशी, इस वजह से अपने आप ही वो एक हैप्पीनेस बाहर आ ही जाती है। बॉस कुछ भी कहे, हम कहते हैं चल ठीक है ना, देख लेंगे भाई। तो चलिए फिर आप देखते हैं आज के इस दिन को एकदम आराम से गुजारने का, और बाकी तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट के साथ, इंफोटेनमेंट के लिए और भी बहुत सारे मजे मस्ती गानों के लिए सुनते रहिए MGM 90.8 FM। तब तक के लिए मैं देता हूँ आपसे अलविदा, मिलते कल सुबह ठीक 7 बजे। सो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक एंड स्टे ट्यून।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है FGM 90.8 FM।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
2: आज मी माझ्या मनाला ठामपणे सांगून टाकलं प्रियंका, माणसाला जन्मतच दोन हात नसतात, त्याला असतात ते फक्त दोन पाय।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। अब समय है दिन भर की भागदौड़ को थोड़ा पीछे छोड़ने का और इस खूबसूरत शाम का आनंद लेने का। शाम का समय अपने आप में बहुत खास होता है। ये पल हमें दिन भर की मेहनत के बाद कुछ सुकून के पल देता है। चाहे आप घर लौट रहे हो, परिवार के साथ समय बिता रहे हैं या फिर अपने मन पसंदीदा काम में व्यस्त है, हम चाहते हैं कि आपकी ये शाम मुस्कुराहटों से भरी रहे। याद रखिए, जिंदगी की खुशियां हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होती। कभी एक प्यारी सी मुस्कान, किसी अपने का फोन या एक कप चाय के साथ बिताए गए कुछ शांत पल हमारी जिंदगी में मायने रखते हैं। तो आज की इस शाम अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, मन में जो भी तनाव हो उसे कुछ देर के लिए किनारे लगाइए और उन बातों के बारे में सोचिए जो आपको खुशी देती हो। आपकी इस खूबसूरत शाम को और भी यादगार बनाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन गाने, ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब मन थोड़ा उदास हो, थकान महसूस हो रही हो या दिन कुछ खास अच्छा ना गुजर रहा हो तो एक अच्छा सा गाना सुनते ही मूड बदल जाता है? यार गानों में ना सचमुच वो एक खास जादू होता है। गाने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि हमारे जज्बातों को भी समझते हैं। कभी कोई रोमांटिक गाना चेहरे पर मुस्कान ले आता है तो कभी कोई जोशीला गाना हमें एनर्जी दे जाता है। कुछ गाने हमें पुरानी यादों की गलियों में ले जाते हैं तो कुछ आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देते हैं। गाने की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि भाषा, उम्र और सीमाओं से वो परे होता है। चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, एक अच्छा गाना आपके दिल को और सुकून पहुंचा सकता है। शायद यही वजह है कि दुनिया भर में लोग अपने सुख दुख अपनी कहानियों और अपने जज्बातों के संगीत के जरिए साझा करते हैं। तो अगर आपका दिन थोड़ा मुश्किल रहा हो तो अपने फेवरेट गाने की प्लेलिस्ट चलाइए। यकीन मानिए आपकी जिंदगी में जरा सा सुकून आ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स कहीं मत जाना, बस सुनते रहना MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। जिंदगी में हर कोई सफलता पाना चाहता है। हम मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद चीज़ें हमारे मन मुताबिक नहीं हो पाती, हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। हालांकि उस समय असफलता अच्छी नहीं लगती, लेकिन यही अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब हम किसी चुनौती में सफल नहीं हो पाते, तब हमें अपनी कमियों को समझने और खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। असफलता हमें विनम्र मतलब हम्बल बनाती है। ये हमें याद दिलाती है कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। जब हम मुश्किल दौर से गुजरते हैं, तब हम दूसरे संघर्ष को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। हमारे अंदर धैर्य आता है, समझ बढ़ती है और हम लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील बनते हैं। कई बार जीवन की सबसे बड़ी सीख जीत में नहीं बल्कि हार में मिलती है। इसलिए अगर कभी कोई कोशिश सफल ना हो तो उसे अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत समझो, क्योंकि हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। अपनी सफलताओं से घबराइए मत, उन्हें अपनी कहानी का एक अहम हिस्सा बनाइए। एंड ऑफ कोर्स आगे बढ़ते रहिए और सुनते रहिए MJ 90.8 FM। साथ है तो बात है,

0: चिकर मानस उपचार व व्यसन मुक्ति तज्ञ
1: सतत चिंता अति विचार करने भीति वाटने धास्ती बसने भास होने घाबरने संशय करने शंका येणे चिडचिडपणा एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे मंत्र चाळेपणा व्यसन दिता लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे वैवाहिक समस्या या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान समुपदेशन व्यसन मुक्ती पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध आजच भेट द्या
0: उत्कर्ष क्लिनिक हर्सुल टी पॉइंट एचपी पेट्रोल पंप शेजारी जळगाव रोड छत्रपती संभाजीनगर अंतरुग्ण विभाग दिशा हॉस्पिटल समुपदेशन काउंसिलिंग सेंटर संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ छत्रपती संभाजीनगर कॉन्टॅक्ट ऑन 8888992688
2: Attention future researchers and innovators.
3: MG University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. Thus it's LLB nantar kara LLM Constitution Criminal and Intellectual Property Rights madhe 2 varshe tar business madhe 1 varshacha vishesh abhyaskram.
2: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
3: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgumu.ac.in/phd or call on 9067612000
4: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप टेस्टी स्टार्टर्स मलाई टिक्का कबाब चिकन तंदूरी मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी रूफटॉप एम्बियंस अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर बीड बाईपास रोड छत्रपति संभाजीनगर

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। यार कहते हैं हर खता की होती है कोई ना कोई सज़ा, लेकिन सज़ा का मतलब हमेशा कोई बड़ी परेशानी या नुकसान नहीं होता। कई बार हमारी गलतियों का सबसे बड़ा असर हमें एक सीख के रूप में भी मिलता है। जिंदगी में हम सभी से गलतियां होती है, कभी जल्दबाजी में, कभी गुस्से में, तो कभी बिना सोचे समझे की गए फैसलों में। उस समय शायद हमें अपनी गलती का एहसास न हो, लेकिन समय के साथ उसके परिणाम सामने आ जाते हैं। हालांकि गलतियों का मकसद हमें तोड़ना नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनाना होता है। जब हम अपनी खता को स्वीकार करते हैं और उससे सीखते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। जो इंसान अपनी गलती मान लेता है वही पहले से ज़्यादा समझदार और मजबूत बनकर उभरता है। इसलिए अगर कभी आपसे कोई भूल हो जाए तो उससे भागिए मत, उसे स्वीकार कीजिए, सुधारने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जिंदगी हर दिन हमें एक नया मौका देती है खुद को बेहतर बनाने का। याद रखिए, गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन उसे सीख लेना इंसान की सबसे बड़ी खूबी है और शायद यही सीख हमें सही रास्ते की ओर ले जाती है। आप सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
5: ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी।
6: Programs B.Tech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus, N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। कभी आपने गौर किया है कि जब हमारा कमरा बिखरा होता है तो मन भी थोड़ा उलझा उलझा सा लगता है, और जैसे ही हम उसे साफ और व्यवस्थित करते हैं एक अलग ही सुकून महसूस होता है। हमारा कमरा सिर्फ चार दीवारों का एक हिस्सा नहीं होता, बल्कि ये हमारी सोच और हमारी दिनचर्या का भी आईना होता है। जब आसपास का माहौल साफ सुथरा हो और व्यवस्थित हो तो काम करने में मन लगता है, ध्यान बेहतर रहता है और तनाव भी कम महसूस होता है। कमरा साफ करने का मतलब सिर्फ चीजों को इधर उधर से उठा कर रखना नहीं, ये अपने लिए एक बेहतर माहौल तैयार करने जैसा है। कभी कभी सिर्फ 10-15 मिनट निकाल कर किताबें व्यवस्थित रखना, बेकार चीजें हटाना या बिस्तर ठीक करना भी पूरे दिन का मूड बेहतर बना सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम अपने आसपास की जगह को व्यवस्थित करते हैं तो मन में बहुत ही अच्छा और ताजगी भरा विश्वास आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमने सिर्फ कमरा नहीं बल्कि अपने विचारों को भी थोड़ा साफ करा है। तो दोस्तों, अगर आज आपको थोड़ा थका हुआ उलझा हुआ महसूस हो तो एक छोटा सा काम करके देखिए, अपने कमरे का कोई एक कोना ही सही उसे साफ और व्यवस्थित करके देखिए। हो सकता है आपको उम्मीद से ज़्यादा अच्छा महसूस हो। पॉजिटिव रहिए, सोच को अच्छा बनाइए एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए MJ Mani Pondy FM। साथ है तो बात है।

बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। यार क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हमारी मेज, कमरा या काम करने की जगह बिखरी हुई होती है तो हमारे विचारों में भी थोड़ी उलझने बढ़ती है, और जब सब कुछ अपनी जगह पर सजा हुआ होता है तो सोचने और डिसीजन लेने में आसानी होती है। दरअसल हमारे आसपास का माहौल हमारे मन पर भी असर डालता है। जब हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज देखते हैं तो हमें उन्हें ढूंढने में समय नहीं लगता और हमारा ध्यान ज़्यादा ज़रूरी कामों पर पड़ता है, चाहे वो आपकी किताबें हो, मोबाइल की फाइल हो, ऑफिस की डेस्क हो या घर का कोई छोटा सा कोना। थोड़ी सी व्यवस्था आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बना सकती है। जब अननेसेसरी चीज़ें कम होती है तो मन में भी एक तरह की स्पष्टता महसूस होती है। कई बार जब हम किसी समस्या का हल नहीं ढूंढ पाते तो हमें लगता है कि जवाब कहीं बाहर है, लेकिन कभी कभी शुरुआत अपने आसपास की चीज़ों को व्यवस्थित करने से ही होती है। एक साफ और सलीकेदार माहौल हमें बेहतर सोचने और बेहतर फैसला लेने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज थोड़ा समय निकालिए, अपनी मेज़, अलमारी या अपने काम की जगह को ऑर्गेनाइज कीजिए। हो सकता है कि उसके साथ आपकी सोच भी पहले से ज़्यादा स्पष्ट और सकारात्मक हो। इसी खूबसूरत विचार के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ बेहतरीन गाने ओनली ऑन एमजी 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। शब्द कुछ छोटे होते हैं लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। कई बार हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कह देते हैं जो सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचा देता है। बाद में भले ही हमें अपनी बात का पछतावा हो लेकिन कुछ शब्दों के निशान लंबे समय तक नहीं जाते। इसीलिए कहा जाता है कि बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। एक छोटा सा विराम हमें ये समझने का मौका देता है कि जो हम कहने जा रहे हैं वो सही है या नहीं, जरूरी है या नहीं, और इससे किसी का दिल तो नहीं दुखेगा। अच्छी बातचीत सिर्फ अपनी बात कहने का नाम नहीं है बल्कि सही शब्दों का चुनाव करने की कला भी है। जब हम सोच समझकर बोलते हैं तो रिश्तों में सम्मान बढ़ता है, गलतफहमियां कम होती है और हमारी बात का असर भी ज्यादा होता है। खासकर गुस्से के समय शब्दों पर नियंत्रण बहुत जरूरी होता है क्योंकि गुस्सा कुछ मिनटों का होता है लेकिन उससे कही गई बातें कई बार लंबे समय तक याद रहती है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई महत्वपूर्ण बात कहनी हो या फीलिंग्स कुछ ज़्यादा हो तो बस एक पल रुकिए, सोचिए और फिर बोलिए। हो सकता है ये छोटी सी आदत आपके रिश्तों और जीवन में बड़ा बदलाव लाए। इसी खूबसूरत सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ बेहतरीन गाने। ओनली ऑन FM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: देखते देखते हमारी हैप्पी इवनिंग अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। दिस इज आर जी मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 FM। उम्मीद है कि आज की ये शाम आपके लिए संगीत, मुस्कान और अच्छी बातों से भरपूर रही होगी। हर शाम अपने साथ कुछ यादें छोड़ जाती है, कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें खुशी देते हैं, कुछ हमें कुछ नया सिखा जाते हैं और यही छोटी छोटी बातें जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। अगर आज का दिन आपके लिए शानदार रहा तो उसकी खुशियों को अपने साथ लेकर जाइए और अगर दिन थोड़ा मुश्किल रहा तो उसे यही छोड़ दीजिए, क्योंकि कल एक नई सुबह आपका इंतजार कर रही है, नए अवसरों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। याद रखिए, जिंदगी हर दिन हमें एक नया मौका देती है मुस्कुराने का, सीखने का और आगे बढ़ने का। इसलिए बीते हुए पलों की चिंता छोड़िए और आने वाले कल का स्वागत पूरे विश्वास के साथ कीजिए। आपके साथ बिताया गया हर समय हमारे लिए बहुत खास है। आपका प्यार, आपका साथ यूं ही हमारे साथ बनाए रखिए। इस मोड़ को और भी खूबसूरत बनाने के लिए फिर से दिल से शुक्रिया। अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं प्रे करती हूँ कि आपकी रात सुकून भरी जाए एंड आपका आने वाला दिन खूबसूरत हो।
1: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन

0: is now inviting application for PhD admissions 2026 and 2027. तसेच LLB नंतर करा LLM. Constitution, Criminal आणि Intellectual Property Rights मध्ये 2 वर्ष तर Business मध्ये 1 वर्षाचा विशेष अभ्यासक्रम.
1: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
0: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 906761200.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर।

किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। एक छोटा सा शहर था, वहां एक आदमी रहता था, आम आदमी। सुबह समय पर उठता, घर वालों की उम्मीदें उठाता, ऑफिस में बॉस के डांट उठाता और शाम को थकान से टूटा हुआ आता। घर पहुंचकर अपने बच्चों को देखकर एक मुस्कान जरूर आती थी उसके चेहरे पर। हर कोई सोचता, यार ये हमेशा मुस्कुराता कैसे रहता है। किसी को नहीं पता था कि उस हंसी के पीछे कितनी अनकही हार है, कितने छोटे छोटे सपने टले हुए हैं, कितने बोल न सकने वाले दर्द छुपे हैं। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, पापा आप थकते नहीं हो? और उसने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, थकता हूँ बेटा, बस ठहरता नहीं हूँ। बस यही एक लाइन सब कुछ कह गई। उस दिन उसकी बेटी ने पहली बार समझा कि मर्द की मुस्कान कमजोरी नहीं, हिम्मत का दूसरा नाम है। वो मुस्कान किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए होती है कि जिंदगी चाहे जितनी भारी क्यों ना लगे, मैं हारने वाला नहीं हूँ। तो दोस्तों, अगर आज कहीं आपको भी मुस्कान ओढ़नी पड़ रही है, तो याद रखना, आप नकली मुस्कान नहीं पहन रहे, आप अपने अंदर की ताकत को जगा रहे हैं। और क्या पता आपकी छोटी सी मुस्कान किसी अपने को आज का सबसे बड़ा हौसला दे दे। क्योंकि मर्द की मुस्कान आवाज नहीं करती, लेकिन उसके पीछे की कहानी बहुत कुछ कह जाती है। तो उस मुस्कान को समझिएगा और उसके दर्द को महसूस कीजिएगा। किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।